0: खाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: कूल किंग।
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे

0: साथ ना उठाना।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: 1 2 3 ये लो, 1 2 3 ये लो।
3: ये क्या है भाई?
2: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: तूफान है ये।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सो ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: कूल किंग
6: चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
7: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

टेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा। कर में खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: Lo que Joliet estaba esperando. Lo que Joliet estaba esperando. Una radio vía internet. Con todo lo que querías escuchar.
1: Check this out.
0: Variedad de música, entrevistas, consejos de salud y belleza. Y mucho más. Espérala muy pronto. Cyber y en radio.
2: Stay tuned to FM 100.
3: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: One station
7: 100 FM.
5: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
8: Cool King.
9: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
10: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
11: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
12: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
13: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: One station
7: 100 FM.
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: 100 FM, The Music Machine.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
1: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
2: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: सबसे अच्छा अच्छा सबसे प्यारा FM 100 हमारा।
1: भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया सबका मैं, क्योंकि अब आ रहे

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555-0011।

मुझे दर्द दिल की दवा नहीं, मुझे दर्द दिल के दलाइल दे। तेरा आना मुझ पे जरूरी था, तेरे आने के कुछ मराहिल थे। हम दोनों में काफी मसाइल थे, पर हम दोनों एक दूसरे के कायल थे। कभी मिला करते थे पहाड़ों पे, कभी मिला करते थे हम साहिल पे।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga
1: aur bhul ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: ले लो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो.
4: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो. और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: जुमातुल मुबारक की खुसूसी नशियात आप सुनेंगे सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावुन से.
8: कराची, लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम. अब आप सुनेंगे FM 100 पर मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज जुमा.
9: अल्लाहु अकबर, अल्लाह

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कूल किंग, बिजली का बिल देखा, आँखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 2 p.m. The time check is brought to you by
1: Yelo by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yelo के through payment करो.
3: 1, 2, 3 Yelo. 1, 2, 3 Yelo.
4: ये क्या है भाई?
2: 1. Jacket, shoes हो या watch, जो चाहे select करो. 2. JazzCash पर Yelo से payment करो. और 3. Yelo से अपनी payment को 3 installments में break करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. Yelo by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yelo के through payment करो.

0: कुकिंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Yellow by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और Yellow के through payment करो.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.

से भी जाए कुर्बान हम 100 दफा जाना हिसाब तो कभी किया ही नहीं मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं।

0: कुकिंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सट्टा छुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

तुम से तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: ये लो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100
2: इरशादे बारी ताला है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। सूरह अनफाल।
1: FM
3: 5 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
6: Ek, do, teen, ye lo. एक दो तीन ये लो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
6: एंड अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
0: एंड अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: We play all

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वन स्टेशन 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: ने दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
2: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Cool King. चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
5: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो.
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो. और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
8: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: दिस प्रोग्राम

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: वन स्टेशन 100 FM।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
1: Cool King. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: कूल किंग।
2: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
3: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
1: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशाद बारी ताला है, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है, और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। सूरह यूनुस।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।

0: मैं आपकी आरज़ू रमशरकारी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर प्रोग्राम सिवाज टोन जो कि कई सालों से पेश किया जा रहा है जिसमें मशहूर माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपको सितारों के मुताबिक जिंदगी की उलझन से निकलने का तरीका बताते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक जैम स्टोन के जरिए, एक पत्थर के जरिए वो एक नगीना ही आपको हीलिंग देगा जो कि सिवाज स्टोन से मिलेगा। सिवाज स्टोन का नंबर है 0333555001 0333555001 0334222312 0333555001 0334222312 0333555 0011 माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपके हाथों की लकीरों की मदद से आपकी मुश्किल को भांप लेते हैं। यूं वो आपको सिवाज स्टोन का लकी जैम स्टोन बताकर रास्ते आसान बना देते हैं। तो अभी राब्ता कीजिए इन दिए गए नंबरों पे।
1: पूरे पाकिस्तान में आज ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव इस्लामाबाद से है और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा अक्रॉस द पाकिस्तान जहां जहां भी आप सिवाज स्टोन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये FM 100 के जरिए प्रोग्राम कई सालों से प्रोग्राम चल रहा है। ये प्योर जैम स्टोन का प्रोग्राम है लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसलिए भी आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यारो उठो भागो, कुछ

काम करो, घर में सुस्त रह के क्या करेंगे आप? घर में बैठ के सारा दिन वक्त जाया करते हैं, और हम आपके लिए एक हिम्मत का प्रोग्राम लाते हैं जो जैमस्टोन एक ऐसी चीज है कि आपके हर मसले का हल करता है। ये जैमस्टोन है, लेकिन ये कुदरती नबातात, कुदरती नवादरात हैं कि जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं, और अगर आप हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सारे काम आपसे हो सकते हैं। छोटी, एक छोटा सा कीड़ा है, मगर बहुत बुलंद हौसला और बड़े मकासद पूरा करती है। एक कितार में सीधे सफर करना और अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठाना, तेज बारिशों और हरे वक्तों से बचाव के लिए, हर बुरे हालात से बचाव के लिए अपना सामान जो गजा का है पहले से इकट्ठा कर लेना, ये सब इंसानों के लिए अपने अंदर बहुत से सबक और दर्स लिए हुए हैं। तुर्की के मशहूर स्कॉलर उस्ताद बदीउज़्ज़मा सईद कहते हैं कि अगर जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हो तो चींटियों की जिंदगी से सीखो। चींटियों की एक और आदत अपने आप को हर किस्म के हालात के मुताबिक तेजी से ढाल लेना है। यही वजह है कि वो हर किस्म के हालात में बआसानी सरवाइव कर जाती है। चींटियां ऐसी शक्ल में आबादियों में कायम रहती हैं, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से ना सिर्फ रवाबित कायम रखती है, बल्कि मौका पड़ने पर चींटियों की पूरी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से बाकायदा जंग करने के लिए भी निकल खड़ी होती है, जो कि तफाक की बड़ी मिसाल है। दुनिया के पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए अफराद की तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। एक के साथ एक मिलाएं तो 11 बनते हैं, इसी तरह एक एक इजाफा करते जाएं तो देखें कि कैसे हम आहंगी और तरक्की दुनिया में फरोग पाई जाती है। सभी अगर अंधेरा अंधेरा कहेंगे तो अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, लेकिन अगर कोई एक आकर मोमबत्ती जलाई गई तो ये कुछ रोशनी होगी, और हमने रोशनियों की तलाश करनी है। हमने चींटियों की मिसाल को देखना है, जमीन की दलदल में चलने वाली चींटी, उसने किस तरह डिसिप्लिन पैदा कर लिया है, अपने आप को एक डिसिप्लिन के तहत लिए चल रही है। लेकिन हम टूट फूट जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमें बहुत कुछ नवाजा गया, लेकिन हम अपने आप को बेहतर कर ही नहीं पाते। हमने खुद को बेहतर करना है। अब हमारे वतन अजीज में अभी देखें 6 सितंबर को हम एक बाकायदा बड़ा सेलिब्रेट करते हैं फंक्शन, हमारी अपनी पाक फौज का, अपनी पाक फोर्सेस के, कि हमारी पाक फौज कितनी बहादुरी से लड़ती है। अब आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसे ही बहादुर हो जाती है? पाक फौज डिसिप्लिन के तहत बहादुर है। हमारी पाक फौज डिसिप्लिन को लेकर आगे चलती है, और डिसिप्लिन की वजह से हमारा वतन अजीज दुनिया की नजरों में टॉप का वतन है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी पाक फौज है, हमारी फोर्सेस हैं, हमारी ये यूनिफॉर्म के वो इदारे हैं जो एक डिसिप्लिन के तहत चलते हैं। चींटियों की मिसाल को देखते हुए देखें कि किस तरह बहादुरी से हमारी पाक फौज सीना तान कर अपने ऊपर गोली खाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन अपने वतन के लोगों की हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज हम उन मजबूत कौमों में शुमार किए जाते हैं जो दुनिया के मजबूत मुल्क हैं, जो दुनिया के बहादुर मुल्क हैं, और बहादुरी की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी पाक फौज, हमारी पाक आर्मी, हमारी पाक एयरफोर्स, हमारी पाक नेवी और हमारे पुलिस के इदारे। हमने इनको हिम्मत देनी है, और हमने इनकी मिसाल को देखते हुए डिसिप्लिन को कायम करना है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन हमारी फौज के अंदर है। अब खवातीन भी हमारे मुआशरे में आगे बढ़ चुकी हैं, खवातीन आगे बढ़ रही हैं, खवातीन हम को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह शाना बशाना हमारे साथ काम कर रही हैं। खवातीन मुआशरे का एक बुनियादी जुज है, तो खवातीन अब इस वक्त हमारे साथ मुआशरे में काम कर रही हैं, मुआशरे के बुनियादी जुज हैं, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन के बाख्तियार बनाने से वो फैसला साजी के अमल में मर्दों के बराबर हिस्सा ले सकती हैं, और इन फैसलों पर असरअंदाज हो सकती हैं जो उनके खानदान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तय्यन करेंगे। ये अमल न सिर्फ इंसानी हकूक पर मबनी है, बल्कि देरपा तरक्की में भी मौसर है। अब हालिया तौर पर पाक फौज में पहली बार तारीख रकम की गई लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, जो पाक फौज की ना सिर्फ पहली खातून 3-स्टार जनरल बनी, बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर की पहली सर्जन जनरल है, सर्जन जनरल है।

0: हर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334222312। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। जी इरम शहजादी बड़ी तेज लाइनें ब्लिंक कर रही हैं और लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ चुके होंगे, लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में फोन्स की लाइनें बड़ी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं तो मेरा ख्याल हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हैं और फौरी अपना सवाल भेजते चले जाएं। आप एक सेकंड में मैं आपको एक जवाब दूंगा लेकिन डिटेल प्लीज जरूर देनी है। डिटेल क्या है? आपका नाम, आपका निकनेम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ अपना नाम बता दें और सिर्फ अपनी वालदा का नाम बता दें। आप जिस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हैं सिर्फ मुझे वो बता दें और आप पैदा कहां हुए थे ये बता दें, किस इलाके में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं आपको एक सेकंड में आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और अगर आपकी लाइन ना मिल सके तो नाराज नहीं होना, आपने फौरी तौर पर शिवाज स्टोन के नंबर पर रब्ता करना है, वॉइस नोट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर और उसके लिए आपको 0333555001 को डायल करना है और दूसरा नंबर 0334222312 को आप डायल करेंगे और वॉइस नोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं फौरी तौर पर आपको जवाब देता चला जाऊंगा। जी चलिए हमारा पहला कॉलर कौन है?
1: सलाम अलैकुम पाकिस्तान।
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
2: मैं सना बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से।
1: सना अपने बारे में सवाल पूछना चाहती हैं?
2: जी मैंने सवाल पूछना है।
1: पहले डिटेल्स बताइए और सवाल भी पूछिए।
2: मेरा नाम सना है और मेरी मदर का नाम शेन है और मेरी डेट है 1997।
1: डेट ऑफ बर्थ रिपीट कीजिए।
2: 2 जनवरी 1997
1: जी।
2: बारे में पूछना है और अपने बारे में पूछना है और जिनके साथ मेरी शादी हुई उनके बारे में पूछना है।
1: जिनके साथ शादी हुई उनके बारे में पूछना है या शादी होगी?
2: नहीं, जिनके साथ मेरी शादी होगी।
1: ठीक है ठीक है, सही है।
2: थैंक यू।
1: जी डॉक्टर साहब, जिनके साथ शादी होगी उनके बारे में भी पूछना है और अपने बारे में भी पूछना है।
3: सना जी, आपकी शादी तो तकरीबन तैयार हो गई हुई है, अब उनके बारे में मत पूछें क्योंकि वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि नेगेटिव बात आ गई तो सारी जिंदगी आप परेशान रहेंगी कि वो FM 100 के शिवाज स्टोन में ये कह दिया गया था। तो लिहाजा आपके बारे में मैं बता देता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, बड़ी सुलझी हुई हैं, लेकिन कभी कभी आप जज्बाती हो जाती हैं लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है। अगर आप कुछ लम्हे गुस्से में हैं तो बहुत जल्दी आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। हालात को देखकर आप चलती हैं और बहुत समझदार हैं। आपका लकी स्टोन ऑनेक्स है, अगर आपको ऑनेक्स पहनना चाह रही है तो सिवाज स्टोन का 7 कैरेट का आप ऑनेक्स पहनने, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और आपने कोई सवाल नहीं किया कि मेरे बारे में बताएं, सवाल करना पड़ता है, मेरे बारे में क्या बताएं, एजुकेशन का बताएं, ये बताएं कि शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, किसके साथ होगी, तो सब चीजें तो तैयार है आपकी। आपका कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन आपकी जो लाइफ है जायशे के मुताबिक वो बहुत अच्छी है, बड़ी पुरसकून है, आपके घर के माहौल बहुत अच्छा है, घर वाले बहुत अच्छे हैं, इमजीत का माहौल बहुत अच्छा है और स्टोन आपका ऑनेक्स है। जी
0: सिवाज स्टोन से रब्ता करने के लिए आपको सिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-2312। आप सिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवास की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल 1 घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और 1 सेकंड में 1 क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके कर ये होगा कि आप जो सिवाज

0: इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात करनी है?
2: वालेकुम जी, ये क्या FM 100 है?
1: जी FM 100 है, सिवाच स्टोन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लकी जेम स्टोन जानना चाहती हैं अपना?
2: जी मैंने अपनी नंद के बारे में कुछ नाम था तो इसी वजह से कॉल किया।
1: नंद की डिटेल्स बताइए, नाम क्या है, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ?
2: नंद का नाम सानिया है और उसकी मम्मी का नाम है सीना बीबी और हम आजाद कश्मीर से, और डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1995।
1: ठीक है, क्या पूछना तो चाहती हैं?
2: कि शादी कब होगी, शादी कब,
1: नंद की शादी कब होगी? ठीक है, ठीक है जी।
3: आपकी नंद की सानिया की संज्ञा की संज्ञा की शादी जो है उसमें कोई रुकावट नहीं है, और बस आप लोगों की मर्जी है फैमिली की कि जब भी कर दें, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है और रिश्ता भी तकरीबन तैयार है। इसलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि कब होगी, तो ये सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपकी नंद की शादी फरवरी में होगी, फरवरी के लास्ट जो डेज होते हैं फरवरी मंथ के उसमें उनकी शादी हो जाएगी, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। आपकी नंद मिजाज की बहुत अच्छी है, बड़ी ऑनेस्ट है और बड़ी ईमानदारी से जिंदगी को गुजारती है। जी
1: जी,
3: स्टोन अगर आप पूछना चाह रही हैं अपनी नंद का तो उनको आप टोपास पहना दें, सिवाच स्टोन का अगर गोल्डन टोपास पहना देती हैं तो उससे ही होता है कि रिश्ता बहुत अच्छा भी होता है और इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं। टोपास जो है वो इन लॉज के लिए के ऊपर बहुत असर करता है, तो ये अगर इनको पहना देती है तो इनकी लाइफ और शादी बहुत अच्छी रहेगी। जी
1: अस्सलामुअलैकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी मैं आतिफ बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
1: आतिफ किस हवाले से आप पूछना चाहेंगे?
4: जी मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और राइट नाउ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो पूछना था डॉक्टर साहब से कि वो जरा मुझे सजेस्ट करें।
1: डिटेल्स बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर का नाम क्या है और क्या बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है आपको?
4: जी मुझे तो आतिफ ही कहते हैं और 24 सितम्बर 1978 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और गुले नसरीन वालदा का नाम है।
1: सही, बिजनेस क्या करना चाहते हैं आप?
4: मैं रियल स्टेट का।
1: सही, रियल स्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
3: जी आतिफ सर बहुत जहीन, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, उड़ते परिंदे के पर गिनना आपका फन है, आपके अंदर क्वालिटियां बहुत ज्यादा है और आपने जो बिजनेस सिलेक्ट किया है बहुत जबरदस्त बिजनेस है। लेकिन ख्याल रखिएगा इस बिजनेस में जिसको भी पार्टनर बनाए उसका नाम एम से ना हो, क्योंकि एम मीन से थोड़ी सी आपके क्लैश रहेंगे, उससे आपके बिजनेस के अख्तलाफात होते रहेंगे। अगर आप एन, उर्दू में जो एन है, एन वाले ही नाम से अगर आप पार्टनरशिप किसी से कर लेते हैं बहुत अच्छा है, और अगर आप खुद ही काम करते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर है, और अगर आप खुद ही काम कर लेंगे तो बेहतर है। रियल स्टेट आपको रास आएगा, एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़े बड़े बिल्ड और बड़े बिल्डर्स कहलाएंगे। आतिफ साहब आपका लकी स्टोन ओपल है, अगर आप ओपल पहन लेते हैं और अगर ओपल ना मिले तो आप नीलम पहन ले, ब्लूज फायर को आपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहने, ब्लूज फायर आपके लिए दी बेस्ट है और ओपल भी दी बेस्ट है, इन दोनों में से कोई एक स्टोन पहन लीजिए या आपको सिवाच स्टोन मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, और जो सदका बताएंगे वो सदका दें। आपके अंदर हिम्मत और हौसला बहुत है और आप बहुत जल्द बहुत टॉप के शख्स कहलाएंगे। जी
0: शिवाज स्टोन से रابता करने के लिए आप

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग
6: देख के नहीं चलाता क्या? तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज़ कैश।
8: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: कूल किंग,
6: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: कूल किंग
2: बिल्टी का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय तूफान है, हर जीत की पहचान है।
8: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: कूल किंग।
11: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
12: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
13: हल्का सा टच हुआ, लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात।

0: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333-555-0011। This is your music.

0: येलो
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: आज़ान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100
2: इरशादे बारी ताला है, कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ो और ना आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। सूरह बनी इसराइल

0: टॉकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: your location for maximum music.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: compounder.
1: Cool King. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001.
6: Talk is off.
7: Music is on.

0: कूल किंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
0: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
6: Now this one's dedicated to that one love in your life, Bohemia.

0: कूल किंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: कूल किंग।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: कूल किंग।
1: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी।
4: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

0: Jungle FM, the music machine.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Cool King.
2: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: Back to back music
6: on FM 100.

0: you're locked onto the only one. N100.
1: Cool King.
2: देख के नहीं चलाता क्या?
3: बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
4: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: वन स्टेशन
1: 100 FM कूल किंग।
4: चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100
2: FM, your hit music station.